0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 7:08।
1: Bollywood.

0: सात बजकर 12 मिनट ऑन द डे जिसका हम सबको इंतजार रहता है. इट इज अ फ्राइडे जस्ट आवर्स अवे फ्रॉम द वीकेंड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: What are your plans? कुछ अगर amazing सा plan किया हुआ है, share it with me. Send me a WhatsApp 0543091062. That's the number, by the way, to request for your favorite songs. Also, आप जानते हैं, every day in the morning on a weekday from Monday to Friday, first hour is dedicated to you and your choice of music. What is that one song that you'd like to recommend to the UAE to help them wake up much better? So, this song is coming up. भाई तेरा स्टार है से आंखों से तूने 2.0 क्रेजी थिंग्स हैपनिंग एट द एशियन गेम्स. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी थ्रिलर था. 4-3 इंडिया जस्ट मैनेज टू स्क्रेप पास्ट इन द लास्ट मिनट. देयर वाज दिस गोल बाय अभिषेक एंड वाओ आई मीन व्हाट अ गेम दैट वाज. देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब फाइनल होने वाला है ऑन द 3rd. सो दैट इज समथिंग अमेजिंग दैट्स कमिंग अप ऑन द वीकेंड एज वेल. सो गोल्ड मेडल मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेन्स T20 क्रिकेट. हाउ डज दैट साउंड. बट द मिस्ट्री यस्टरडे वाज हु इज एस विश्वनाथ. नाउ व्हाटएवर यू माइट कॉल योरसेल्फ, राइट, यू आर अ सुपरस्टार इंडियन क्रिकेट टीम के आप हिस्सा हो, लेकिन चक्कर ये ना कि एशियन गेम्स में जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो स्कोरबोर्ड पे आपका वही नाम आता है जो आपके पासपोर्ट में हो, राइट. सो हु डू यू थिंक एस विश्वनाथ केम अप ऑन द स्कोरबोर्ड एंड ऑल द इवन वरिष्ठ क्रिकेट फैंस वर कन्फ्यूज कि यार ये कौन सा नया प्लेयर है. नया प्लेयर नहीं है, लेजेंड प्लेयर है एंड हिज पासपोर्ट नेम इज एस Viswanath. Who do you think it could be? If you know, send me a WhatsApp 0543091062. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae. Are you ready?

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: और द टेम्परेचर इज क्वाइट मैनेजेबल, लेकिन खिड़की खोल नहीं सकते, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी से दिन की शुरुआत होती है आजकल। 31 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 71%, विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 30 डिग्रीज सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: What a song that is. जितने भी इसके वर्जन निकलेंगे वो अच्छे ही होते हैं बिकॉज द बेस सॉन्ग इज सो गुड. मिर्जापुर द मूवी का ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ सासों की माला राइट हियर ऑन बिग 106.2.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: I haven't watched the movie yet. मैंने अभी तक मिर्जापुर द मूवी नहीं देखी. Although I'm such a huge fan of the series, or probably because I'm such a big fan of the series, I didn't want to like spoil that experience. ना तो अब now that all the reviews are in and most of them are positive, हाँ अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ सिनेमा और मैं पता नहीं लगी भी है कि नहीं लगी है. Now I'll have to anyways wait for it to come out on OTT, which is the biggest irony. But talking about OTT, आप जानते हैं what happens every weekend, Saturday शाम 7 to 9, and then Sunday from 10 AM to 12 PM, I do the big binge and end up saving a lot of your hard-earned time on the weekend. कि कौन सी चीज़ को देखें, could be an OTT show, it could be an OTT movie, what to watch, what not to watch, कोई एक particular चीज़ है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, whether to stream it or skip it, that's what the show is all about. So if you've got a recommendation, then you can WhatsApp it to me right now, 054-309-1062. That's the number, 054-309-1062. इस वीकेंड पर ऑन द बिग बिंज मैं क्या करूं रिव्यू.
1: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: Hollywood. I can't wait.
1: Okay. 3, 2, 1.
0: Yes!
2: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
0: Whoa, cheese all around.
1: And edge-to-edge toppings.
0: And crispy garlic parmesan crust, too.
1: Let me try.
0: Order your own.
2: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Mina Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2.
5: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: I was all set to tell you, yaar, Friday morning hai, traffic ki shuruaat bhi bilkul dheere, halke se hoti hai, lekin aisa nahi hai aaj. For a change, you'll find lots of congestion heading west, Baghdad Street sabse pehle going towards Al-Nada area, then there's Damascus Street also, and Beirut Street. फिर मदीना मॉल के बाहर साउथ बाउंड ट्रैफिक ऑलरेडी शुरू हो चुका है. देन 311 पर तो ऑल द वे फ्रॉम सिटी सेंटर ज़ाइया टिल किसेस एंड देन ऑल द वे टिल सिटी सेंटर मिर्ज़ीफ़ यू विल फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक. आज बोथ डायरेक्शंस में इंटरनेशनल सिटी के बाहर यू विल फाइंड कंजेशन 311 पर हेडिंग नॉर्थ एंड साउथ. देन देयर 66 विच इज ऑल्सो गेटिंग बिट कंजेस्टेड गोइंग टुवर्ड्स नादल शिबा इन द डायरेक्शन ऑफ 44. स्पीकिंग ऑफ विच, अलखेल रोड पर यू विल फाइंड कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 एंड देन फर्दर साउथ टुवर्ड्स अलकूज 4. शेख जायद रोड पर भी थोड़ा बिजीनेस शुरू हो गया बिफोर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस एंड दैट इज हेडिंग साउथ आफ्टर ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट.
3: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 8:11 ऑन दिस फ्राइडे मॉर्निंग, दिस इज बिग 106.2। एंड यार बहुत मेहनत करते हैं एथलीट्स टू जस्ट रीच दैट एशियन गेम्स लेवल, और वहाँ पर यू नो उनकी कड़ी मेहनत से काफी मेडल्स जीत रहे हैं, सो वो सब तो हो रहा है, लेकिन हमें तो टाइम पास से मतलब है ना। और कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेमीफाइनल में भर भर के हो गया टाइम पास।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: तो क्या हुआ ना कि चेजिंग 170 टू विन द सेमीफाइनल, श्रीलंका वो बोल्ड आउट फॉर 45 रन्स, दे हैड नो आंसर फॉर टू अ सर्टेन जसप्रीत बुमराह, देन देयर वाज अ टीम हैट्रिक आल्सो दैट इंडिया टुक। लेकिन ये सब छोड़ो, साइड में छोड़ो, टाइम पास किस चीज को लेकर हो गया, स्कोरबोर्ड को लेकर हो गया। नाउ चक्कर ये है ना कि व्हेन यू गो टू यू नो द टूर्नामेंट्स लाइक द एशियन गेम्स, हाँ वहां पर जो आपका पासपोर्ट का नाम है वही डिस्प्ले होगा जबरदस्ती। वो पूछते नहीं आपसे कि यार आपका नाम क्या है फिर, है ना, कि व्हाट डू द यू नो वर्ल्ड नो यू एज, यू मस्ट बी अ स्टार, स्टार होंगे अपने घर में। लेकिन यहाँ पर जो स्कोरबोर्ड होगा वो जापान में, उस पर वही नाम होगा जो आपके पासपोर्ट का है। सो इसके चलते देयर वाज एस विश्वनाथ दैट आई आस्क्ड यू अबाउट, हु डू थिंक एस विश्वनाथ कुड बी, इट इज एक्चुअली या संजू सैमसन हु वाज कॉल्ड एस विश्वनाथ, दैट्स हिज नेम ऑन द पासपोर्ट। एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, टी टी वी नंबूरी आपको क्या लगता है किसके पासपोर्ट का नाम है, हुज एक्चुअल लाइक ऑफिशियल नेम इज टी टी वी नंबूरी, इनका नाम भी इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन T20 एशियन गेम्स का स्क्वाड दैट इज नाउ मेड इट टू द फाइनल्स। इफ यू हैव एन आंसर देन व्हाट्सएप इट टू मी 0543 09 106 2। रोज सुबह यहाँ पर आओ द बिग ब्रेकफास्ट पर और बहुत सारे प्राइजेस जीत कर लेकर जाओ। एंड शुरुआत करते हैं हम लोग विद हु गेट्स द पैन, दैट्स द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट। अलॉन्ग विद द पैन यू गेट 250 दिरहम का पापा जॉन्स वाउचर, सिर्फ कह रहा हूँ सिर्फ एक ही शर्त है, एंड यू गॉट टू जस्ट व्हाट्सएप पापा स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप करते रहो पापा स्पेस अपना नाम टू 0543 09 106 2।

0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: Creditmarket.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
4: New term, new Jetour. Drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMIs starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Al Ain and Fujairah today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
7: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: मॉर्निंग ठीक 8:15 ऑन दिस फ्राइडे मॉर्निंग. शुरुआत बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी से हो रही है आजकल. 33 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज. ह्यूमिडिटी स्टिल एट 60% डाउन फ्रॉम 70 अबाउट एन आवर अगो. विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर्स पर आवर. हाईज ऑफ 37, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस.
7: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: And Shaji got it absolutely right. TTV Namboori is the official name of Tilak Varma as per his passport. And that name was displayed at the Asian Games scorecard.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: So we quite a, you know, tense start to Saturday morning, 3rd of October. Yani ki kal India-Pakistan final, the gold medal match is going to happen at the Kurogi Sports Park Nishin in Japan. And it starts at around 9 a.m. UAE time. Conflicted times are here. कोई कहीं पे 8:30 लिखा हुआ है, कहीं 9 बजे. तो 8:30 से देखना शुरू कर दीजिएगा. इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का क्रिकेट फाइनल इज गोइंग टू हैपन. क्वाइट अ ड्रामेटिक सेमी फाइनल इट वाज, इंडिया वर्सेज श्रीलंका. बट टॉकिंग अबाउट गेम्स, टॉकिंग अबाउट कॉन्टेस्ट, आज सुबह का लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर द पापा जॉन्स कॉन्टेस्ट.
1: पार्टिसिपेट इन हु गेट्स द पैन फ्रॉम पापा जॉन्स एंड गेट अ चांस टू विन 250 दिरहम्स पापा जॉन्स वाउचर एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2.
0: 250 दिरहम का एक पापा जॉन्स का वाउचर जीत सकते हैं आप. हु गेट्स द पैन, दैट इज द नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट. सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पापा जॉन्स आई एम गोना गिव यू, एंड उसी इन्फो पे बेस्ड कुछ सवाल. इफ यू परफॉर्म बेटर देन द पर्सन प्लेइंग अगेंस्ट यू इन कॉन्फ्रेंस, देन यू वॉक अवे विद अ 250 दिरहम का पापा जॉन्स का वाउचर. सो पापा स्पेस अपना नाम आपको व्हाट्सएप करना है. पापा स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप इट टू 0543091062. है जवानी तो इश्क होना है से, दिस सॉन्ग इज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. है यूएई तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है भाई. 7 फुट का इंसान नहीं मिलता यहाँ पर. गोल्ड बार आपको देखने को मिलेगा. इट्स 2.12 meters, यानी कि 6 फुट 11.5 inch का एक वर्ल्ड टॉलेस्ट गोल्ड बार इज ऑन डिस्प्ले एट एक्सपो सेंटर शारजा.
1: बिग

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:06
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: Participate in Who Gets the Pan from Papa John's and get a chance to win 250 dirhams Papa John's voucher exclusively on Big 106.2.
1: Yes, Who Gets the Pan decide hoga between Govind and Karan. Good morning to both of you.
2: Good morning.
1: अच्छा ज़्यादा अच्छे मूड में कौन लग रहा है मेरे को? गोविंद लग रहा है. गोविंद?
2: हाँ मैं अच्छे मूड में हूँ, बिकॉज फ्राइडे होने के बाद भी काम पे आ गया हूँ जल्दी.
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को यार कि फ्राइडे के दिन लोग जल्दी काम पे पहुंच जाते हैं कि जल्दी काम पे जाऊंगा जल्दी निकलूंगा. ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर कोई शाम को ना जल्दी निकलता भी है और फिर फंसते हो ट्रैफिक में. क्यों करण?
3: हाँ जी, अपीयरेंसेस आर ऑलवेज रिसेप्टिव.
1: अपीयरेंस, क्या बात है. इस पे पूरी रिसर्च कर रखी है करण जी ने, जो कि मोस्टली हम सब करते ही हैं क्योंकि वीकेंड हमको इतना प्यारा है, इतना प्यारा है. और आपका वीकेंड मैं बनाने की कोशिश करने वाला हूँ. द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट यू बाय पापा जॉन्स एंड 250 दिरहम का पापा जॉन्स वाउचर. किसको जीतना है? हर किसी को जीतना है, लेकिन आप दोनों में से एक ही इस बाजी को मार पाएगा. ठीक है ना
3: जी?
1: तो क्या है रूल्स करण और गोविंद? वेरी क्विकली आई एम गोना बी टेलिंग यू सम things about Papa John's, okay? I'm going to be giving you some information. एक पूरा का पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा. आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मैं आपको तीन सवाल पूछूंगा, best of three. And अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है, गोविंद आर यू देयर?
2: Yes, yes, I am here.
1: So if you think that you know the correct answer, आपको अपना नाम बजर की तरह चिल्लाना है, ठीक है? So you gotta say पापा गोविंद या पापा करण. और जब मैंने वेरीफाई किया कि किसने नाम पहले चिल्लाया पापा के साथ, तो आपको जवाब देने का मौका मिलेगा. अगर आपका जवाब सही हुआ, 1 point इन योर फेवर. ओके, बेस्ट ऑफ 3.
3: परफेक्ट,
1: ठीक है. बजर चेक करें इन 3, 2, 1. 3, 2, 1, गो.
2: पापा गोविंद.
3: पापा.
1: वेरी गुड. ये ट्रायल राउंड था करण, वरना गोविंद जीत जाते इसको सीरियस होता तो. ठीक है, बक अप. ऑलराइट ब्रो, रेडी? आर यू गाइस रेडी? शुड आई गिव यू द इन्फॉर्मेशन नाउ? देखिए, पापा जॉन्स हैज कम अप विद अ वेरी सीरियस पैन पिज्जा. इनफैक्ट इट्स द न्यू स्टैंडर्ड फॉर पैन पिज्जा हियर इन द यूएई एंड इट्स लोडेड विद अ क्रिस्पी गार्लिक पार्मेसान क्रस्ट, एज टू एज टॉपिंग्स, इटालियन सीजनिंग, सॉफ्ट फ्लफी पैन बेक बेस एंड 360 डिग्रीज चीजी गुडनेस. यानी कि चीज ऑन टॉप, अराउंड द साइड्स एंड एट द बेस. 6 चीज ब्लेंड्स लेयर्ड ऑल अराउंड. मोर क्रंच, मोर चीज, मोर टॉपिंग्स इन एवरी बाइट. सुन लिया ध्यान से?
3: जी.
2: यस.
1: करण, गोविंद, आर यू गाइज रेडी?
2: यस.
3: परफेक्ट.
1: Now, the first question for you guys is, who's going to tell me that Papa John's ka pan pizza is loaded with a crispy garlic dash crust?
3: Papa Karan.
1: Ek baar phir se buzzer karenge. Ready? 1, 2, 3.
3: Papa
1: Karan, boliye.
3: Garlic parmesan crust.
1: Garlic parmesan crust is the correct answer. 1-0 in favor of Karan. Bahut hi kaante ki takkar ho rahi hai. It's more a test for me actually to figure out ke kisne buzzer pehle chillaya hai. But Govind, buck up, all right? Next question.
2: Yes.
1: Papa John's ke new pan pizza mein cheesy goodness is dash degrees.
2: Govind. Papa Govind.
1: Papa Govind.
2: 60 degree.
1: Kitne?
2: 60 degree.
1: Karan, do you think the correct answer?
3: Yeah, it's a wrong answer. Correct answer is 360.
1: अरे भाई 360 degrees cheese is जो आपके slice में होगा, because 60 degrees अगर हमें sector काट लिया तो I am getting technical, but Govind यार आप इस बाजी को नहीं मार पाए, but thank you so much. Have a wonderful weekend ahead.
2: Hi Sid bhai, I want to disclose something about this call.
1: Okay.
2: Karan is my banja.
1: क्या?
2: And he is chef.
1: What? एक मिनट आंखें मलने का कान वर्जन कर रहा हूं मैं. क्या?
2: Karan is chef. He is my banja. और
1: गोविंद एक मिनट मामू. ओ, आपने हम सबको मामू बनाया, इससे पहले रिवील क्यों नहीं किया आपने मामू जान के ऐसा है?
2: इसलिए नहीं किया कि अगर हम रिवील करते तो ना मामू बना पाते ना सरप्राइज कॉल में मजा आता.
1: तो ये आप क्या जानबूझ के हारे हैं गोविंद जी, या क्या है? आपका बड़प्पन है ये कहना चाह रहे हैं?
2: नहीं, जब आप वो चीज बता रहे थे, जब पढ़ रहे थे पापा जॉन के लिए, 360 के टाइम शायद मैंने 3 नहीं सुना था, बिकॉज आई एम आउटसाइड.
1: 3 मिनट और 17 सेकंड मेरी जिंदगी के आपने बर्बाद कर दिए बाबू जी. क्या कर रहे हो यार गोविंद भाई?
2: आप बर्बाद कर दिया, इतनी अच्छी चीज मिल गई आपकी तरफ.
1: नहीं, वो तो आप मेरे हुए ना बर्बाद, आपके तो नहीं हुए, आपको 250 दिरहम. लेकिन जब कांटे का सवाल ये है, दैट करण, how magnanimous are you feeling? How generous are you feeling? Are you going to share a bit of this voucher with Mamuji or no?
3: Of course. See, It's like I've been only for 5-6 months in Dubai. मैं को सिर्फ 6-7 महीने
1: हुए हैं. अच्छा, okay, okay.
3: Anything that I get, I share with him, and he is the one telling me all those things.
1: अच्छा, you're in that sharing phase right now. चलो, very good यार. लेकिन आपका relationship कैसा है? Usually जो हमारे जो mythology होती है उसमें जो मामा भांजा अच्छे नहीं होते. कंस, शकुनी, कौन से मामा सबसे ज़्यादा apply करते हैं?
3: Actually मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना, तो मेरे मामा बिल्कुल मेरे बड़े भाई के
1: जैसे. That is so sweet, यार. That is so sweet. You hardly get to hear that about mamus. Govind ji.
2: क्या बात? ये बोलूंगा कि एवरी संडे ये शेफ हमारे घर आता है और हम मोस्टली पिज्जा ही ऑर्डर करते हैं और ये चीज हम मिलकर बात करेंगे.
1: वेरी नाइस यार. सो कांग्रेचुलेशंस. यू नो व्हाट, व्हेन यू डू यू नो गेट द पिज्जास एंड जब पिज्जा पार्टी आपकी हो घर पे पापा जॉन्स की, तो क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स एंड पोस्टेड, टैग अस, पोस्टेड ऑन योर सोशल मीडिया आल्सो, राइट? वी आर सो थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यू नो मामा भांजा इंट्रोडक्शन टू द एंटायर यूएई. यू आर द आइडियल मामा आउट देयर. गोविंद जी, कांग्रेचुलेशंस. वेरी नाइस. चलो, क्या क्या वो हार के जीतने वाले को मामू कहते हैं. टेक केयर मैन. दैट इज गोविंद एंड करण की मामा भांजा जोड़ी. यार मजा आ गया इन लोग से बात करके. यार अगर आप भी जीतना चाहते हैं 250 दिरहम का पापा जॉन्स का वाउचर, जस्ट टाइप आउट पापा स्पेस योर नेम एंड व्हाट्सएप इट टू 0543091062. बहुत सारे लोग शक की नजर से मुझे देख रहे हैं. नहीं, आई स्वेयर आई हैड नो information that ye mama bhanja pairing hai.
0: Participate in Who Gets the Pan from Papa John's and get a chance to win 250 dirhams Papa John's voucher exclusively on Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: The big mix miss kiya gaya.
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो.
4: Hi Ritul.
5: Hello Avani.
4: Okay, I'm gonna ask you one question, a GK का question, not the general knowledge but the German knowledge. Let's see, आप वो answer करते हो.
5: So my GK is strong, general knowledge is strong, German knowledge, yeah, let's see.
4: Which famous autumn festival takes place in Munich every year with food, music and fun? Your options are A, Oktoberfest, B, Springfest, C, Winter Gala.
5: Oktoberfest.
4: Pakka, gayo?
5: Yep, yep.
4: Attend bhi ki hai?
5: No, I have not attended. I have friends from Munich who sends me pictures and videos, so yeah, I want to go but I haven't been yet.
4: So agar jaoge Germany fir doston ko hi milne jaoge bas.
5: Agar Munich jayega to hai idhar.
4: Oktoberfest is the correct answer. You are one step closer to big check into Germany.
5: Thank you. Thank you. Thanks a lot.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 9:29 on the clock and let's take a look sabse pehle at 311. Yahan par you find northbound traffic going towards Arabian Ranches from Sports City. Yahan par there is quite a lot of congestion. Yahan par 6 se 8 minute extra minimum aapko bitane honge. Then the junction of 44, 311 and JVT is also a bit of congestion you'll find out there. इसके अलावा दुबई पाम की पाम जुमेरा की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है दुबई कॉलेज से जैसे आप निकलते हैं. एंड दिस इज ऑन D94 एंड 44 पर अलखेल रोड यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 एंड देन द यूजुअल 311 11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. एक्सपेक्ट ऑन बोथ दीज आर्टरीज अ 6 to 8 मिनट डिले.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Who's excited for the T20? नहीं, ODI World Cup in 2027. हाँ भाई, हर एक चीज T20 के बारे में नहीं होती ना यार, थोड़ा ODI के बारे में भी सोचा करो. That's what Virat Kohli and Rohit Sharma have told us, have taught us. क्योंकि पहले दो matches West Indies versus India and two centuries by the legends themselves. पहले में Virat Kohli, second में Rohit Sharma. And after making that century, he was doing like a high knee run. ऑलमोस्ट टेलिंग दोज पीपल जो उनके क्रिटिक्स थे, वो सेइंग कि यार फिटनेस ही नहीं है, बंदे की फिटनेस ही नहीं है. सेइंग कि नहीं नहीं भाई, हेलो एक्सक्यूज मी, ही स्टिल देयर, ही स्टिल अ चैंपियन. यार रोहित शर्मा की एक्सपीरियंस इज गोन बी प्राइसलेस. दैट्स व्हाट दिनेश कार्तिक सेड, समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द 27 ICC ODI वर्ल्ड कप, द ग्रुप्स हैव बीन कन्फर्म्ड. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. इंडिया पाकिस्तान आर इन द सेम ग्रुप. सो ग्रुप ए इज गोन हैव अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान. वाओ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान इन द सेम ग्रुप. जिम्बाब्वे एंड क्वालिफायर ए. भाई तो कौन बचे ग्रुप बी में? बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड एंड क्वालिफायर बी इन ग्रुप बी. सो वाओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार ग्रुप ए इज गोन बी जस्ट quite a hard foot. And then let's not underestimate Afghanistan. They've got that well-deserved title of giant killers, right? So Afghanistan, Australia, India, Pakistan in the same group. Zimbabwe ko bhi lightly nahi le sakte. And then there's a qualifier A, and group B has its own set of challenges. England, South Africa, Sri Lanka, New Zealand, Bangladesh, and qualifier B in group B as well. One would assume that Australia, England ko wo same group mein rakhte, lekin nahi. So that's what has been decided as far as the groups are concerned. Aap jante hain ye South Africa, Zimbabwe mein hone wala hai 2027 ka ODI World Cup. हमारा अपना खुद का एक वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पर, बिग चेक इन टू जर्मनी. अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, बिग चेक इन स्पेस अपना नाम, व्हाट्सएप करो 0543091062 पर.

0: सच बताइए, गाना सुन के आपको अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिया होता है या इरिटेशन होती है? दैट इज द बर्निंग क्वेश्चन दीस डेज यार.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: राइट, ये खबर आपके सोशल फीड तक भी पहुंच गई होगी ना. अब तक तो काफी महीनों से ये चल रहा है कि अराउंड नेशनल डे यू कैन एक्चुअली, इफ यू हैव 3 रिमेनिंग डेज ऑफ योर एनुअल छुट्टी, तो यू कैन हैव एन एंटायर लंबी चौड़ी 9-10 दिन का वेकेशन. टर्न योर छुट्टी इनटू अ वेकेशन अराउंड दैट टाइम. यू डू द मैथ. लेकिन इफ यू नीड हेल्प प्लानिंग योर नेक्स्ट हॉलीडे, holidaymarket.ae. अब आप एल्फ्रेड को तो ऑलरेडी जानते हैं, यू ऑलरेडी नो एल्फ्रेड फ्रॉम insurancemarket.ae. राइट नाउ एल्फ्रेड कैन हेल्प यू प्लान योर नेक्स्ट हॉलीडे टू. विजिट holidaymarket.ae या फिर कॉल करो 800-ALFRED फॉर हॉलीडे पैकेजेस, स्टेकेशंस एंड सो मच मोर.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सेड, सेड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय जेटोर यूएई. ड्राइव योर फ्यूचर, पार्ट ऑफ एलीट ग्रुप होल्डिंग. High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, ethnic partner Bavri and Kora, jewelry partner Mina Jewelers, travel partner AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
3: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: I've got Akshi with me on the phone line. Good morning, Akshi. How are you doing?
2: Good morning. I'm good. How are you?
1: You're good. आपको जरा भी डर नहीं लग रहा है? You're a software engineer और software engineering की दुनिया में तो ये डर फैला हुआ है ना कि AI मेरी नौकरी खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है?
2: नहीं, उससे मुझे नहीं लगता, because हम लोग दिन रात यूज करते हैं तो it's okay. See, AI का क्या है ना, आपको AI यूज करना आना चाहिए. अगर आपने उसे, आप उसे अपने आप को यूज मत करने दो, आप उसको यूज करो.
1: नहीं, पर जब हमारी ऑफ एयर बात हो रही थी तब आपने और ही इंटरेस्टिंग बात कही थी. मैंने आपसे पूछा कि आपकी नौकरी जाएगी कि नहीं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ही ने तो उसको बनाया है, पाल पोस के इतना बड़ा के काबिल बनाया, तो हमारी जिस थाली में खाता उसमें छेद करेगा क्या? I don't know if these emotions
2: work. हमें पता है, हमें उसे कैसे यूज करना है, हम उसको अपने आप को यूज नहीं करने देंगे.
1: वो बॉलीवुड का डायलॉग है ना कि तुम्हें जन्म दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें तेरी जान ले भी सकता है. क्या बात है अक्षी, वेरी वेरी.
2: हम उसमें बग भी डाल सकते हैं.
1: बग भी डाल सकते हैं, तो मैं बग भी डाल सकते हैं भाई वो. या लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर अक्षी. ये सब टेंशन टू साइड में छोड़ो और फोकस करो ऑन द ट्रिप टू जर्मनी. यू आर द लास्ट पर्सन, राइट? बिल्कुल ही मौके पे आपने चौका मार दिया ऑन द बिग ब्रेकफास्ट. आप आखिरी कंटेस्टेंट हैं. ऑलराइट, सो नो प्रेशर. It doesn't mean that आप pressure low. So I'm going to ask you a very simple question. It's the German knowledge contest का ये आखिरी सवाल है. अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया, आपका नाम चला गया draw के अंदर, and you could be winning this trip to Germany with Team Big. Okay?
2: Wow. Okay.
1: You'll have 10 seconds to answer a very simple question. Are you ready?
2: Yes.
1: आपका सवाल है, what is the famous name for Germany's highway system known worldwide for its fast driving lanes? आपके options हैं A, Autobahn, B, एक्सप्रेसवे, या सी रूट 66. ए ऑटोबान, बी एक्सप्रेसवे, या सी रूट 66.
2: ओके, ए ऑटोबान. कंफर्म.
1: करेक्ट आंसर है. बहुत ही बड़ी राहत की सांस लेती हुई आक्षी, आपका नाम चला गया ड्रॉ के अंदर, एंड यू आर वन स्टेप क्लोजर विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी. अब बताओ कैसा फील कर रहे हो, एंड हाउ बैडली डू यू नीड और डिजर्व दिस वेकेशन?
2: आई नीड अ वेकेशन, आई हैव टू किड्स, ट्रस्ट मी, आई नीड इट सो बैडली.
1: यार बेचारे बच्चे,
2: उनके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, इसीलिए आई नीड अ टाइम.
1: बच्चों के काबिल कंधों पे आपने बंदूक लगाकर जो जान के चला दिया है, बट या आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू. बट चलो कांग्रेचुलेशंस, अभी तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ है, यू वन स्टेप क्लोजर, एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. आस्क बोथ योर किड्स टू कीप देयर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑल्सो, क्योंकि अगर आपका नाम ड्रॉ में से निकल गया तो मम्मी जाएंगी जर्मनी और बच्चे करेंगे धींगा मस्ती पीछे. चलो अक्षी, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ड्रॉ. राइट,
2: बाय.
1: दैट्स अक्षी, हमारी आज की विनर, आज की ड्रॉ एंट्रेंट है, एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स सी कि किसका नंबर लगता है इन द बिग चेक इन टू जर्मनी.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED-247.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: मॉर्निंग 10:17 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह। लेट्स टेक अ लुक एट द टेंपरेचर राइट नाउ। इट इज 35 डिग्रीज सेल्सियस and humidity at 50%, winds blowing at 14 kilometers per hour, highs of 37, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो।

0: Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम?
2: नाम।
3: Money follows, my brother.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Show's brought to you by Jetour. New term, new Jetour. Drive home your dream SUV with Jetour's latest unbeatable offers. VAT on us or 0% interest. Plus, get a free service package. Enjoy 1 million kilometer warranty. EMI starting just 966 dirhams per month. So, your dream SUV could be closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain, Fujairah. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply. On that note, it's time for me to go and enjoy my weekend, but only till tomorrow. Aap jante hain, on a weekend, main karta hoon the big binge. कौन सा वो शो होगा जिसकी हम लोग करेंगे चीरफाड़, थोड़ी सी करेंगे रिव्यूइंग, देखा जाए नहीं देखा जाए. ऑल दैट जानने के लिए आपको ट्यून इन करना पड़ेगा बिग 106.2 सैटरडे शाम 7 से 9 एंड देन संडे फ्रॉम 10 AM टू 12 PM एंड देन मंडे मॉर्निंग ऑफ कोर्स वील किक स्टार्ट द वीक विद द बिग ब्रेकफास्ट राइट हियर ऑन बिग. डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, वी आर 106.2 बिग FM ऑन इंस्टाग्राम. आई एम सिड सेठ SIDSETH. तो मिलता हूँ बहुत जल्द. इंजॉय द रेस्ट ऑफ योर फ्राइडे एंड इंडीड द वीकेंड. बाय बाय.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big 106.2. That's my song.

0: 106.2. The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय रितुल।
3: हेलो आवनी।
2: आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन, अ जीके का क्वेश्चन, नॉट द जनरल नॉलेज बट द जर्मन नॉलेज। लेट्स सी आप वो आंसर करते हो।
3: सो माय जीके इज स्ट्रांग, जनरल नॉलेज इज स्ट्रांग, जर्मन नॉलेज या लेट्स सी।
2: व्हिच फेमस ऑटम फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन म्यूनिख एवरी ईयर विद फूड, म्यूजिक एंड फन? योर ऑप्शंस आर ए ऑक्टोबर फेस्ट, बी स्प्रिंग फेस्ट, सी विंटर गाला।
3: ऑक्टोबर फेस्ट।
2: पक्का गयो?
3: Yep, yep.
2: Attend भी किया?
3: No, I have not attended. I have friends from Munich who sends me pictures and videos. So yeah, I want to go, but I haven't been yet.
2: तो अगर जाओगे जर्मनी फिर दोस्तों को ही मिलने जाओगे बस?
3: अगर म्यूनिख जाएगा तो है इधर।
2: Oktoberfest is the correct answer. You are one step closer to big check into Germany.
3: Thank you. Thank you. Thanks a lot.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: It's 37 degrees out there with 43% humidity. लेकिन अगर आप weather vibes के हिसाब से चलो तो गर्मी सर्दी लग सकती है, लेकिन अगर आप दिन के हिसाब से चलो, Friday vibes are on.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal! Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पर मैं हूँ अवनी आपके साथ. आज है 2 अक्टूबर फ्राइडे. लेकिन 2 अक्टूबर को ये चीज हम कभी नहीं भूल सकते हैं. कौन सी है वो चीज?
3: क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से
4: जी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था. हम सब वहीं गए.
3: हाँ, 2 तारीख को सत्संग
5: प्रोग्राम हम पहुँचने से पहले शुरू हो गया था.
3: 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पंजी गए थे, 2 तारीख को सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में आई थी. 2 अक्टूबर शनिवार को, 2 तारीख को गए थे, शनिवार था.
6: 2 अक्टूबर शनिवार,
3: 3 तारीख को, फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ आके पिक्चर देखी और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को और 3 तारीख को वापस.
6: हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को.
2: वेल, कंक्लूजन भी लौटने वाला है. दृश्यम पार्ट 3 आज रिलीज हो चुका है, स्टारिंग अजय देवगन. एंड इस बार अक्षय खन्ना नहीं है फिल्म में, इस बार जयदीप अलावत हैं. दिस इज द फाइनल कंक्लूजन. लेट्स सी विजय सलगांवकर ये केस जीतते हैं या हारते हैं. बट द गुड पार्ट इज जो लोग ये फिल्म देख चुके हैं ना, द नेटिजंस आर सो मच डिसेंट कि अभी तक स्पॉयलर्स बाहर नहीं आया है. फिंगर्स क्रॉस्ड गोना वॉच दिस मूवी दिस वीकेंड. अगर आपको भी पसंद आई है दृश्यम पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे किसको नहीं आती है यार. दृश्यम पार्ट 3 आज रिलीज हो चुका है, दैट्स the final conclusion. Do watch it in theaters. And ek aur film release hui hai, kaun si hai batati hu in a bit. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2 The Beat of Bollywood.
1: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: I'm gonna announce the finalists जिन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली है for this check into Germany. Time to surprise Mr. Lester.
4: Hello.
3: Hi, is that Lester?
4: Hi, Mansi, how are you?
3: अरे वाह, आपने मेरी आवाज पहचान ली।
4: Yes.
3: How sweet. Were you expecting a call?
4: Yes, actually, kind of nervous to be honest.
3: Lester.
4: Yes, tell me what happened.
3: I don't know how to say this to you. Are you driving?
4: Actually, yes. I just got off from office right now.
3: Sometimes, you know, you reach the finish line and then you don't win it.
4: It's always based on luck, you could say.
3: Yeah, but are you lucky?
4: To be honest, I'm not really sure, actually.
3: Have you ever won not anything me. With those scratch cards and stuff?
4: No. I've been trying, but...
3: It's always better luck next time.
4: Yes. So it's like, you know, you tend to try it always and then eventually sometime you might hit it, sometimes you might not.
3: I know, Lester. This time the universe is in your favor. Congratulations!
4: Thank you so much. Whoa. Oh, God, God, this is epic. This is too epic.
3: You are traveling to Germany with us!
4: Woo! And this is my first time. Thank you so much, Mansi. Thank you.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: देर हाल का फेस पे ट्रैफिक बिल्डअप हो रहा है अराउंड एयरपोर्ट रोड, डमास्कस स्ट्रीट एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स अल नादा। उसके साथ साथ D63 अम्सकिम रोड पर, अलबर्शा साउथ एंड मोटर सिटी पर हैवी मूवमेंट है फिलहाल। E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर देयर स्लो सेक्शंस अराउंड JVC स्पोर्ट्स सिटी एंड अरेबियन रैंचेस। कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
6: नाउ लीज अ ब्रांड न्यू SUV फ्रॉम जेटवर्ड एंड स्कोडा, प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान। विजिट selfdrive.ae। TNC अप्लाई।
1: 106.2।
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ. Then another film जो आज रिलीज हुई है उसका नाम है प्रेम कीटाणु. और ये सवाल तो यार हर इंसान के मन में आता है जब भी उसका क्रश बनता है.
3: स्माइल का मतलब हाँ ही है ना.
4: कतिया करूं
2: पूरा टाइम तो यार यही सोचने में निकल जाता है कि ये हाँ है या ना है, ये एक्शन का रिएक्शन है या रिएक्शन का एक्शन है. वेल, प्रेम कीटाणु स्टारिंग वीर पहाड़ी इन द फिल्म ये रिलीज होने वाली है, हो चुकी है आज एक्चुअली. एंड अपार शक्ति खुराना भी है इस फिल्म में. दिस इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड रोम कॉम. और जिनके भी क्रश हैं, वन साइडेड लव है या फिर फ्रेंड जोन हो चुके हैं, देखो ना एक्चुअली लव दिस फिल्म जितना मुझे लगता है. चेक करेंगे सिनेमा हॉल में जाके, थिएटर्स में जाके ये फिल्म देखेंगे, उसके बाद रिव्यू विल बी अप. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ है ना। हालांकि आज फ्राइडे वाइब्स है, लेकिन वीकेंड पे ना आपको घर वाले काम याद आते हैं। याद आता है कि यार वो क्रेडिट कार्ड लेना था, ढूंढ लेती हूँ, पर्सनल लोन के बारे में नहीं पता है मुझे। एंड जब भी मुझसे कोई पूछ लेता था ना पहले कि बताओ भाई कौन सा बढ़िया क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए,
2: खुदा जाने के
1: यही बोलती थी, खुदा जाने। मुझे तो खास पता नहीं है, लेकिन अगर आपको भी अभी तक नहीं पता है, यू लुकिंग फॉर अ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर मॉर्गेज, स्टार्ट विद creditmarket.ee। देयर इज वन मोर वे अल्फ्रेड कैन एक्चुअली हेल्प यू। कॉल करना है आपको 800 अल्फ्रेड पर, या फिर आप विजिट कर सकते हो creditmarket.ee। इट्स दैट सिंपल। एंड कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक 2:08. बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: facts. I found unbeatable holiday deals, staycations, visas, and much more. Your next escape could be closer than you think. Visit holidaymarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, and this is your chance to go to Big Check-In to Germany. आज आखिरी चांस है. करना क्या है आपको, टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062, बिकॉज इट्स टाइम. टाइम फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी. वेकेशन रेडी है, प्लान हम कर चुके हैं, बस आपको अपना नाम रजिस्टर करना है. लेट्स सी आज रैंडमाइजर किसका नाम पिक करता है, किसको कॉल जाएगा, हु इज वन स्टेप क्लोजर टू गो टू दिस बिग चेक इन टू जर्मनी. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम. व्हाट्सएप नंबर ये है 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: feelings.
1: तुम बीमार हो?
2: Nope.
1: तो लेती क्यों?
2: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं.
1: कैसे सेंसेशंस?
2: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दाह, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरभराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, धरभराहट, धरभराहट, छटपटाहट, छटपटाहट, सुबुगाहट, सुबुलाहट, सुबुदाई, सुबिलाई.
3: Big 106.2, the beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
6: 37 डिग्रीज आउट देयर विद 44% ह्यूमिडिटी, लेकिन ये ह्यूमिडिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी शाम तक, लेकिन वीकेंड आपका एंजॉय करने का मन हो जाएगा बिकॉज वेदर में मेजर डिफरेंस देखने को मिला है इस हफ्ते.
5: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
5: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आज फाइनल बिग चेक इन टू जर्मनी के लिए रैंडमाइजर ने पिक किया है जो नाम वो है गणेश। हाय गणेश।
3: हाय मैम। हाय,
2: कैसे हो आप?
3: गुड गुड, ऑल गुड मैम।
2: क्या कर रहे थे आप?
3: एकदम लंच कर रहा था मैं।
2: ओ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया?
3: नहीं नहीं, हो गया, डन, थैंक यू।
2: क्या खाया लंच में आपने?
3: चिकन एंड राइस।
2: फ्राइडे लंच के लिए तो बेस्ट है, लेकिन आप करते क्या हो गणेश?
3: मैं पीआरओ हूँ।
2: वाह भाई। हाँ। ये तो सबकी दिक्कतें सॉल्व करते हैं।
3: सॉल्व करते हैं।
2: आपकी दिक्कत क्या है? लेकिन वेकेशन चाहिए आपको।
3: हाँ, ऑलरेडी अप्रूव हो गया, नेक्स्ट इसी मंथ में जा रहा हूँ घर।
2: अगर आप जर्मनी जाते हो तो फिर आपको एक और वेकेशन मिल जाएगी?
3: या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
2: देख रही हूँ मैं कितनी छुट्टियां मिलती हैं। कोई और चेक रखे ना रखे, मैं जरूर चेक रख रही हूँ। अच्छा गणेश, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जीके का सवाल है। वेल, मुझे लगता है क्योंकि आप ऐसी फील्ड में हो तो आपको ये पता होना चाहिए, पता हो गा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो आई एम गोना आस्क यू अ जीके का सवाल, नॉट द जनरल नॉलेज बट द जर्मन नॉलेज। यू रेडी?
3: रेडी।
2: व्हाट आर द 3 कलर्स ऑन द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ जर्मनी? ऑप्शंस हैं ब्लैक रेड गोल्ड, बी ब्लू व्हाइट रेड, या फिर सी रेड व्हाइट ग्रीन।
3: बी।
2: बी द ब्लू व्हाइट रेड।
3: यस।
2: पक्का?
3: पक्का 200%।
2: यार थोड़ा घबरा जाओ, मैं सच में बोल रही हूँ। मैं वापस से ऑप्शंस बोलती हूँ, ठीक है? ब्लैक रेड गोल्ड, ब्लू व्हाइट रेड, या फिर रेड व्हाइट ग्रीन।
3: कंफ्यूज हो रहा हूँ।
2: आपने क्या इंकी पिंकी पोंकी किया था क्या? सच में याद है?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ।
2: आराम से जवाब दो, मुझसे डर गए? मतलब मुझसे तो कोई भी ना डरे।
3: ब्लैक रेड गोल्ड
2: कर लिया, गूगल से देखा है ना आपने?
3: नहीं मैम, मैं बाहर में अभी किचन में।
2: तो हाँ,
3: किचन एरिया में।
2: तो किचन में इंटरनेट नहीं आता आपका?
3: नहीं तो मैं मोबाइल से बात करूँ, इंटरनेट नहीं देखा हूँ मैं।
2: ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप सही बोल रहे हैं, सही जवाब
3: था। ओह माय गॉड।
2: You are one step closer to big check-in to Germany. आपका नाम रजिस्टर हो चुका है, बट लेट्स सी अभी कि आप हमारे साथ जर्मनी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। बट कंग्रेचुलेशंस गणेश, यू आर
3: थैंक यू मैम
2: लास्ट रजिस्टर्ड नंबर ऑन माई शो।

0: रजिस्टर हो चुका है, बट लेट्स सी अभी कि आप हमारे साथ जर्मनी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे. बट कंग्रेचुलेशंस गणेश, यू आर लास्ट रजिस्टर्ड नंबर ऑन माय शो एंड बहुत जल्द पता लग जाएगा अब कि आप हमारे साथ जाओगे या नहीं जाओगे.
1: ये मेरी बेबी का ब्लेसिंग है, आई थिंक मैं जाऊंगा.
0: इट्स अ बेबी बॉय या बेबी गर्ल?
1: अभी स्टिल डिलीवरी नहीं हुआ, इसी मंथ में एक्सपेक्टेड है.
0: फिंगर्स क्रॉस, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली.
1: थैंक यू. अगर कॉल रिसीव आ गया तो मतलब उसमें भी चांस है, हो जाएगा.
0: Yes,
1: 100%. Thank you, ma'am. Thank you.
0: Bye.
1: Okay, bye.
0: If you want to participate to Big Check into Germany, एक आखिरी बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हो शाम के शो में. नंबर वापस से रिपीट कर देती हूँ. व्हाट्सएप नंबर है 0543091062.
2: Participate in the Big Check in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Ethnic partner Bavri and Kora. Jewelry partner Meena Jewelers. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: क्या तुमने भाई बताया ना कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. And did you know about this? Abu Dhabi is taking air quality monitoring to next level with AI. There's a new system जो अब track कर सकता है कि how much traffic pollution pedestrians are actually exposed to, वो भी real time में. There's an AI tool जो estimate करेगा कितनी emissions हो रही हैं हर एक vehicle से. And वो traffic patterns बनाएगा कि सबसे ज़्यादा pollution किस area में है, किस road पर है, किस traffic की वजह से होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांट और ट्रीज लगाने हैं टू टैकल पॉल्यूशन एंड द हीट हॉटस्पॉट. यू नो दिस इज द बेस्ट बेस्ट बेस्ट पार्ट अबाउट द अथॉरिटीज. भाई इतना माइन्यूट डिटेलिंग कितनी बड़ी बात है. एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ये AI बताएगा. एंड सबसे बड़ी बात हमें पता है कि ये उतनी ही देर में एग्जीक्यूट हो भी जाएगा.
2: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो ना लगे लगे.
1: Absolutely love with this AI technology. अगर ये कर दे भाई हमारे लिए तो win-win situation हो जाएगी. Keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix at 3 p.m. peak lunch hour time जो चल रहा है, and it's time we play खाओ पियो ऐश करो with you. A chance to win open movie tickets with this call. करना है आपको मुझे इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062. मैं खेलूंगी आपके साथ एक रैपिड फायर वाली गेम. इफ यू थिंक यू आर अ बिगर एंड अ बेटर फूडी देन मी, ऊपर से वीकेंड आ गया है, वैसे यार चीट मील्स चलने वाले हैं मेरे तो अच्छे खासे. उन दोनों में से आपको मैं कोई चूज करवाऊंगी, आपको रैपिडली आंसर करना है. अगर आपको लगता है उतने बड़े फूडी हो, कॉल करो मुझे इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. It's Friday. The weekend vibes are here and weekend पे यार cheat meal ही चलते हैं and time हो चुका है हमारा. Let's see who's on the call. Hello.
3: Hi.
2: Hi. कौन बात कर रहे हैं?
3: Karan this side.
2: Karan, lunch कर लिया आपने?
3: Lunch done. Yes.
2: क्या खाया लंच में आज?
3: Actually, I eat rice and सिंधी बेसन कड़ी.
2: Oh wow, यार ये सिंधी कड़ी मुझे बड़ी पसंद है. हालांकि मैं पंजाब की हूँ तो मैं पकौड़े वाली कड़ी खाती हूँ. मैंने पहली बार किसी के टिफिन में ही खाई थी सिंधी कड़ी एंड चावल.
3: Wow, you like it?
2: I loved it.
3: And you know, उसमें कुछ स्टफिंग रहता है, आप लेडी फिंगर डाल दो, क्लस्टर बीन डाल दो, ग्रीन पीस, आलू.
2: यही मेरा क्लिकबेट था कि मुझे उसमें इतनी सब्जियां दिखी लाइक ये तो बहुत हेल्दी है, ये मैं खा लेती हूँ. And it was actually very fulfilling.
3: And it's tangy and spicy because you have some tamarind paste also.
2: Yes, true that. वैसे ये सुनने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया, हालांकि मैं लंच कर चुकी हूँ. लेट्स सी कि ये गेम खेलने के बाद आपके मुंह में वापस से पानी आता है या नहीं आता है, लंच की क्रेविंग वापस से होती है या नहीं. सो फॉर दिस वीकेंड लंच क्या खाना पसंद करेंगे आप करण? मैक एंड चीज या फिर पिज्जा?
3: पिज्जा.
2: पिज्जा या पेस्टो पास्ता?
3: पिज्जा.
2: पिज्जा. पिज्जा या फिर वेज मंचूरियन?
3: रेड मंचूरियन.
2: वेज मंचूरियन या फिर चिली पनीर?
3: चिली पनीर.
2: चिली पनीर या मटन बिरयानी?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर क्लासिक राजमा चावल?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर पिज्जा?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी या फिर कोई और बिरयानी?
3: मटन बिरयानी.
2: मटन बिरयानी के ऊपर नहीं जाते हैं ना वीकेंड वाला, ये आपका चीट मील है क्या? कांट बीट. आपने कह दिया, मैंने मान लिया. You can't beat mutton biryani. अच्छा आपको बनानी आती है करण, ये बताओ मुझे पहले.
3: Yes, I can cook.
2: तो वीकेंड पे बनाते हो या फिर वीकडे पे भी जब मन करे तो बना लेते हो? It's long process, right?
3: It's only mostly Sunday.
2: So इस संडे क्या बनने वाला है फिर?
3: इस संडे तो एक्चुअली नहीं ही बनेगा, बिकॉज राइट नाउ इज यू नो सम रिलीजियस मंथ इज गोइंग ऑन इन श्रावण एंड ऑल.
2: यस, कोई बात नहीं, मैं आपकी सिंधी कड़ी का वेट कर लूंगी.
3: Okay, most welcome.
2: Thank you so much for calling, Karan. If you want to win open movie tickets, agar aapko khelni hai mere saath ek hope you ash karoge game, all you have to do is give me a message on this WhatsApp number 0543091062. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हैलोवीन पार्टी का नाम सुन के मेरा भी यार जिया धड़क जाता है, मेरा बड़ा ही फ्रजाइल हार्ट है, मुझे बहुत जल्दी डर लग जाता है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी, आपके साथ है। October month शुरू हो चुका है, Halloween end of October में होता है, 31st October, and Dubai is hosting a Halloween run, जिसमें ये costume party है, उसमें भागना है आपको। The West Beach will turn into a giant Halloween party on Saturday, which is October 31st, जहाँ पे runners को बोला जा रहा है कि आप अपने best costumes में आओगे, लेकिन of course Halloween costumes में आना है आपको। And बचपन में जब भी costume या फिर फैंसी ड्रेस होता था, आई यूज टू अवॉइड कि मैं किसी भी हॉरर स्टोरी का कोई पार्ट बन के आऊँ, लेकिन अब अगर मुझे मौका मिलता है तो भाई मैं तो ये फिल्म की हीरोइन, ये फिल्म की जो भूत है ना, ये बन के आऊंगी। नाइन्टीज किड्स को याद होगा, अगर आपको ये फिल्म का नाम पता है कॉल करो मुझे 800-1062 पर, बताओ ये फिल्म का नाम क्या था। भाई बचपन में जब भी मैंने ये फिल्म देखी है ना, मैं तो मम्मी का हाथ पकड़ के सोती थी कि मैं तो ऐसे सो ही नहीं सकती हूँ। बड़ा हॉरर फिल्म शबाना आजमी की ये फिल्म है, एंड अब अगर देखो तो वो कैरेक्टर मैच ही नहीं होता कि भाई ये कैरेक्टर शबाना आजमी ने किया था। कौन सी फिल्म है ये बताओ मुझे 800-1062 पर कॉल करके। एंटल देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It's 36 degrees out there, but it actually feels like 45 because humid levels फिलहाल 50% पे चल रहे हैं, which is actually high.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैंने पूछा था कि ये वाला ट्रैक जो है ये कौन सी फिल्म का है. Let's use the call. Hello.
2: Hello.
1: Hi.
2: Good afternoon. How are you?
1: Good afternoon. मैं ठीक हूँ. आपका नाम क्या है?
2: फिरोज.
1: फिरोज. फिरोज ये कौन सा ट्रैक है बताओ. कौन सी फिल्म का है?
2: मकड़ी.
1: मकड़ी. कितनी बार देखी है मकड़ी आपने?
2: काफी टाइम देखी. काफी बार देखी मैंने. बचपन में देखी मैंने काफी टाइम.
1: आपको डर लगता था मकड़ी देखते हुए?
2: किस टाइम लगता था? अभी तो फनी जैसा लगता है.
1: क्योंकि मैं तो मम्मी का हाथ पकड़ के सोती थी. मुझे तो नींद ही नहीं आती थी और इतनी बार ये टीवी पे लगती थी. बट इट यूज्ड टू बी माय फेवरेट.
2: होती रहती थी.
1: तो जब आप टेलीविजन पे देखते थे तो आप अपने भाई बहन के साथ लड़ते थे कि ये बंद करो या फिर मुझे चेंज करना है?
2: नहीं, क्योंकि नहीं, मेरे छोटे भाई बहन लोग बोलना बंद करने के लिए बोलते. मैं नहीं बोलता था करने के लिए.
1: So you actually
2: introduced
1: मकड़ी टू योर सिबलिंग्स, राइट?
2: या मम्मी ने हमारे मेरे को पीछे से पकड़ के काय को डरा रहा है, काय को मस्ते कर रहा है.
1: What a nostalgic film. Makadi has to be our childhood horror genre film. And उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे Conjuring देख के भी उतना डर लगा जितना मुझे मकड़ी देख के डर लगा था.
2: उस टाइम का genre कुछ और था. अभी तो उतना नहीं. नहीं.
1: अच्छा, recent कोई आपने horror film देखी है which has been your favorite?
2: Evil Dead देखी है सिर्फ. First Sector. Evil Dead, Evil Burns.
1: वो तो कुछ ज्यादा ही डरावनी थी. How about your thoughts on Obsession?
2: ऑब्सेशन नहीं देखी मैंने.
1: नहीं देखी है. मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जरूर देखना.
2: हाँ, मैंने उसके ट्रेलर देखा बट आई डिडंट लाइक. आई डोंट नो, मतलब हॉरर जैसा भी लगा नहीं. मैंने नहीं देखी.
1: डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. आई थिंक सो आपको पहले देखनी चाहिए. आई डोंट थिंक सो आप उसको हॉरर कैटेगरी में रखोगे बट इट हैज सो मच ऑफ थ्रिल. यू लव इट.
2: ओके, आई विल ट्राई.
1: ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
2: थैंक यू. बाय
1: बाय. यू टेल मी 0543091062 पर मैसेज करके इस व्हाट्सएप नंबर पर के आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है. 0543091062.

जैसे डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ बेबी लेट्स गो राइट नाउ देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड इस वीकेंड आप फ्री ना रहो, बिंज वॉच करते रहो. इसी के लिए इस वीकेंड काफी कुछ रिलीज हुआ है ओटीटी पर. नेटफ्लिक्स पर पहली बार तो पार्ट टू रिलीज हुआ है चुंबक का, जो कि दो हफ्ते पहले पार्ट वन रिलीज हुआ था. इस द मेकर्स ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई, वही क्योस वही मेस जो है अब आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा. पार्ट टू रिलीज हो चुका है. अनदर वन इज नेटफ्लिक्स पर ओ माई डॉग फिल्म रिलीज हो गई है. इट्स सच अ क्यूट फिल्म, आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करनी है. मैं बता रही हूँ, रेकमेंड कर रही हूँ. एक्चुअली मैं प्लीज बोल रही हूँ, जाके ही देखो, यू विल थैंक मी लेटर. द अदर वन अक्टूबर 30th को रिलीज होने वाली है अमेजन प्राइम वीडियो पर, मिर्जापुर. अगर आपने अभी तक थिएटर्स में नहीं देखी है, अक्टूबर इज दैट मंथ जहाँ पर आप बहुत कुछ बिंज वॉच करने वाले हो. अ लॉट कमिंग अप योर वे. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
3: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम? नाम
4: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: दिस सॉन्ग एंड द लॉन्ग ड्राइव, इसका कोई तोड़ नहीं है यार.
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ. एंड अगर आपको अपनी गेड़ी, अपनी ड्राइव और स्मूथ बनानी है, नाउ यू कैन लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम डिटोर एंड स्कोडा विद प्राइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 द रूम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. व्हाट अ ग्रेट ऑफर. करना क्या है आपको, बस विजिट करना है selfdrive.ae पर. सब कुछ वहां मिल जाएगा, TNC अप्लाई. बाकी मैं मिलती हूँ आपको संडे को फिर से द बिग रेकमेंड्स के साथ. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. वीकेंड वाइब्स एकदम ऑन है गानों के साथ. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: Time check. Honestly, मैं कह रही हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। फिलहाल 5:06।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: the perfect holiday? Tell me what you want. Your expert travel agent will curate it around you. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: इंस्टाग्राम ने अभी अभी मुझे अलर्ट दिया, आई थिंक मैंने कोई सेटिंग चेंज कर दी है कि अगर मैं 6-7 घंटे से ज्यादा इंस्टा यूज करूं तो वो मुझे बताएगा कि यू नो टू मच स्क्रीन टाइम. बट आई एम अडिक्टेड टू इंस्टाग्राम एंड आई एम अडिक्टेड टू जेन ज़ीज एंड देयर स्लोगन्स. एक कचौड़ी दो समोसा. ऑनेस्टली आज के जमाने में नहीं करना चाहिए किसी पे भरोसा. फिलहाल यहाँ पे एक चीज है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि अगर आप ट्रैफिक में अटकोगे, हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं एंड टू एंटरटेन यू हम आप ही से गाना गवाते हैं. इफ यू आर अ सिंगर, डजंट मैटर इफ यू आर अ बाथरूम सिंगर, यू एंजॉय सिंगिंग, आपको गाना गाने का शौक है, देन दिस इज इट. एवरी सिंगल इवनिंग व्हाइल यू आर इन द जैम, वी जैम हियर.
1: कैरियोके.
2: अब ये लेट 90s का गाना है. ये मूवी मुझे इतनी पसंद है. आई हैव सीन दिस मूवी, आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट काउंट. आई लव लव लव दिस वन.

0: Of course, पहचान लिया है, phone lines are buzzing. अगर आपको ये गाना याद आ गया, you want to sing the song, give me a call. We're karaokeing 800-1062 पर.
1: Karaoke.

0: Big.
1: आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood. Early in the morning, The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: थैंक गॉड आज दो दो तीन तीन घंटे का ट्रैफिक नहीं है एग्जैक्टली. फिलहाल अब 45 मिनट डिले DIFC बिजनेस बे. इट इज अ बिट पैची. हैवी ट्रैफिक दो अगर आप फहीदी के आसपास है. ऑल्सो उद मैथा करामा अ 35 to 45 मिनट डिले. डिपेंड्स कि आप कहाँ पे अटके हो. जुमेरा रोड पे ट्रैफिक मिलेगा. इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स काइट बीच तक आपको ट्रैफिक मिलेगा. There's also patchy traffic near Barsha 1. Plus, अगर आप अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हैं, there is a 15 से 25 मिनट का डिले. हैवी ट्रैफिक दो हेस स्ट्रीट पर हेडिंग टूवर्ड्स JVC, JVT, ऑल द वे टूवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी. इसके अलावा कहीं अटके हो मुझे बताओ 800-1062 पर.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
4: पर ये बात हो

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: We are karaokeing, we are bringing in the weekend, and joining us is Alka Yagnik ji, matlab Seema ji. Hi Seema.
2: Hi.
1: How are you? Kaisa raha ye hafta?
2: Bahut acha, bahut. Very, very nice.
1: I know, right? There's something about October. I have a very good feeling about October, November, yeah, December.
2: Absolutely. There's some positive energy in the air.
1: I know. What plans for the weekend?
2: For the weekend, going to Abu Dhabi. We have a build-up, AI everything. So we'll
1: wow,
2: be there.
1: So you're working?
2: Yes, yes.
1: जो काम करने के बावजूद वीकेंड पे ये बंदी जो है इतना मुस्कुरा रही है, मतलब कुछ है ऑफिस में जो आपका दिल लगा के रखता है ना?
2: अरे आप हो ना साथ में,
1: फिलहाल गाना वाना गाने का शौक है सीमा?
2: थोड़ा थोड़ा सा.
1: आवाज तो बड़ी प्यारी है आपकी, तो आप गाओगे भी अच्छा. आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस मूवी बाय द वे.
2: Who doesn't?
1: It's a brilliant movie. It's my guilty pleasure. All right. Without further ado, ab Seema ki madhur awaaz mein, dosto.
0: Karaoke.
2: Dil ne ye kaha hai dil se, mohabbat ho gayi hai tumse. Ho gayi hai tumse. मेरी जान मेरे दिल पर इस बार कर लो.
1: जितना बेकरार हूँ मैं,
2: उतना बेकरार तुम हो. मुझसे तुम भी प्यार कर लो.
1: और लिरिक्स थोड़े से और याद कर लो. बट गाया बड़ा अच्छा सीमा. वेरी नाइस, वेरी नाइस.
2: थैंक यू.
1: तो कितने दिल बेकरार करती हो अबू धाबी में?
2: फिलहाल के लिए ओनली वर्क इज गोइंग ऑन एंड दैट्स इट.
1: आई डोंट बिलीव यू. आई थिंक सीमा इज वेरी पॉपुलर इन ऑफिस.
2: सो स्वीट, काश ये ट्रू हो जाए. बट
1: ये ट्रू ही है, ऐसा लग रहा है कि धड़कनें बढ़ा ही देती होगी सीमा ऑफिस जाते हुए. कितना मजा आ रहा है.
2: अभी हम तो ड्राइव कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ में जा रही हूँ, एंड एक्चुअली ही टोल्ड मी टू कॉल अप, और फिर मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया. तो ही इज सिंगिंग ओवर हियर और मुझे प्रॉम कर रहे हैं.
1: हाउ स्वीट. तो दो लाइन उनको भी बोलो सुना दें.
2: हाँ हाँ, फॉर श्योर. वन सेकंड, गाओ जरा.
1: गाओ ना जरा, सुनो. कितना शर्मा रहे दोनों, मुझे बड़ा मजा आ रहा है. कितने साल हो गए आपकी शादी को? 12 साल. 12 साल बाद भी सीमा को देख के धड़कने तेज होती हैं आपकी?
3: ओह वेरी मच.
1: हाय सो स्वीट, हाय सो स्वीट. यू गाइस हैव अ ग्रेट ड्राइव टू अबू धाबी. लवली टॉकिंग टू द बोथ ऑफ यू, एंड बहुत कमाल गाया सीमा आपने.
2: थैंक यू.
1: बाय बाय बाय. या ये कैरियोकी, इफ यू एंजॉय सिंगिंग, ऑल यू नीड टू डू इज गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: Karaoke. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम है, वीकेंड का माहौल है, यहाँ पे हम माहौल बना रहे हैं विद्यकारियों की। जॉइनिंग अस नाउ इज दीपेश। पेट नेम क्या है आपका? दीपू?
2: नहीं, पिंकल।
1: तो ये दीपेश से पिंकल कैसे हो गया?
2: पता नहीं
1: है। पिंकल का मतलब क्या होता है?
2: पेट नेम है इसलिए मैंने कोई पूछा नहीं है।
1: इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। पिंकल का
2: सर्च करना पड़ेगा।
1: अभी कर देते हैं, इतनी उम्र में आपने सर्च नहीं करा। मैं अभी आपको बताती हूँ कि पिंकल का मतलब क्या होता है।
2: चैट जीपीटी है, पहले इतनी पूरी एज में नहीं था मेरे पास चैट जीपीटी।
1: हाँ, आपके पास नहीं चैट जीपीटी? मेरी तो जिंदगी चैट जीपीटी के भरोसे चल रही है। वो चला गया तो बस मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। पिंकल का मतलब होता है, ये स्कॉटिश नाम है अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। वाह, कौन गया था स्कॉटलैंड? मम्मी के पापा?
2: नहीं, कोई नहीं गया।
1: वाह, नाम आपका स्कॉटिश रखा है उन्होंने, वेरी नाइस। फिलहाल मिस्टर पिंकल, आपने गाना पहचान लिया आई एम श्योर। आप गाने के लिए तैयार हो?
2: तैयार।
1: और राइट, अब सुनेंगे पिंकल की आवाज में।
3: दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई तुमसे, मेरी जान मेरे दिल बर, मेरा एतबार कर लो, इतना बेकरार हूँ मैं।

0: ये कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
1: हाय हाय हाय, मजा आ गया। ये गाना सुन के क्या याद आता है? हनीमून?
0: नहीं नहीं नहीं
1: यू नो, कल किसी ने मुझे बहुत अच्छी रील भेजी कि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उन्होंने क्या बोल दिया। मैं उनमें से हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं, आप बराबर फिल्टर नहीं लगाती है, बहुत अच्छा है।
1: तो ये आपने हनीमून पे गाना गाया था?
0: नहीं, ये मैंने गाना हनीमून पे नहीं गाया था। हनीमून पे तो दूसरा गाना गाया।
1: कौन सा गाना गाया था?
0: बातें ये कभी ना।
1: ओए होए, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आप?
0: बाली।
1: बाली, वेरी नाइस, फॉरेन कंट्री। फिलहाल ये गाना आपने बहुत कमाल गाया। मिस्टर पिंकल, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग एंड अ ग्रेट ड्राइव बैक होम।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म।
1: थैंक यू, बाय। ये कैरियोकी अगर आप भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 0543091062 पर। बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: flights, hotels, transfers, visas, leave it to me. Everything your holiday needs, sorted. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill. I am Mansi and challenge accept kar liya Arya ne. Hi, Arya.
3: Hi, good evening.
2: Wow.
3: How are you?
2: I am good. You sound very, very tired. Weekend aa gaya, Arya.
3: Long weekend.
2: कौन सा ऐसा काम है जो आपको इतना थका रहा है आजकल?
3: नहीं, I was traveling between Abu Dhabi and Dubai.
2: I
3: went to Dubai and now I'm back. Yeah.
2: I think you like me. Yeah. Weekend pe no plan is the best plan for you.
3: Absolutely. Netflix and chill.
2: आपको पता है ना इसका दूसरा मतलब होता है Netflix and chill का?
3: नहीं, दूसरा मतलब मुझे पता नहीं है. Staying at home and chilling.
2: सिंगल लोगों के लिए Netflix and chill का मतलब कुछ और होता है. आप सिंगल हो?
3: No.
2: हाँ, फिर ठीक है, फिर आप Netflix and chill ही करोगे. फिलहाल आ रहा है, we'll play this fun game, it's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
3: परफेक्ट.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन चीजें जो आपके किचन में मिलेंगी विद द लेटर बी.
3: ब्रेड,
2: बन, सेम टाइम खत्म. तीन काजोल की मूवीज.
3: ऑलराइट, BTLJ, कल हो, कुछ कुछ होता है.
2: ओके, टाइम खत्म होता है सर. 5 सेकंड्स, फटाफट खेलने वाला गेम है ये.
3: ओके.
2: थ्री आइटम्स दैट यू स्टील फ्रॉम अ होटल रूम.
3: आई डोंट नो, मे बी टॉवल, पेन एंड पेपर.
2: पहला बंदा है जिसने शैम्पू कंडीशनर छोड़ दिया है, पेन एंड पेपर से ही खुश है.
3: थ्री
2: थिंग्स दैट यू हाइड फ्रॉम योर वाइफ.
3: नथिंग.
2: झूठ. सफेद झूठ.
3: एब्सोल्युटली नॉट.
2: थ्री थिंग्स दैट आर व्हाइट.
3: शर्ट, पेपर एंड पेन, पेंसिल कलर.
2: पेंसिल का टाइम फटाफट सर, इट्स 5 सेकंड्स, यू हैव टू बी वेरी क्विक, डोंट थिंक, जस्ट से व्हाट्स कमिंग. थ्री सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर वी.
3: वी.
2: हाँ,
3: आई लूज.
2: अरे, ट्राई भी नहीं किया आपने. विक्की कौशल, विराट कोहली, बहुत सारे हैं यार. वानी कपूर
3: में नहीं आते.
2: तो मतलब मैंने सही चैलेंज दिया था ना.
3: आपने बिल्कुल सही चैलेंज दिया.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: Thank you so much, Arya. It was lovely playing the game with you. Game तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला, but मजा आया आपसे बात करके. आराम करना वीकेंड पे. You need a little rest.
3: Yes.
2: Thank you. Bye. Yeah. 5 second rule. Like I said, it sounds easy, but आसान है नहीं खेलना है. तो 800-1062 is the number to dial.

0: में थोड़ा सा विटामिन मस्ती कम लग रहा है ना आपको, तो चलो आपको घुमाने लेके जाते हैं, वो भी ऑल द वे टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Khora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: देखो दिलजीत दोसांझ ने कहा है कि हवा पानी बदलते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ तो पानी भी किसी काम नहीं आता है. हाय, तो हम आपको ले जा रहे हैं सीधा जर्मनी. एंड टुडे इज द वेरी लास्ट चांस फॉर यू. पिछले चार हफ्तों से वी शॉर्टलिस्टेड सो मेनी ऑफ यू. अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी कंफर्म्ड योर सीट्स एंड यू फ्लाइंग विद अस. यू कुड बी नेक्स्ट, बट इन द नेक्स्ट 25 मिनट्स अगर आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो आज शाम शायद आपका नंबर लग सकता है. बिग चेक इन, अपना नाम 0543091062 पर व्हाट्सएप करना है. एक ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप विद अ फन फन फन बंच ऑफ पीपल इज वेटिंग फॉर यू. फिलहाल इट इज द वीकेंड कमिंग अप, ब्रेक के उस पार. Right here on Big 106.2, keeping you company until 9. मैं हूं मानसी.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:06 Bollywood.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Early in the morning.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: एक घंटा 25 मिनट का डिले राइट नाउ ऑन शेख जायद. आई थिंक शेख जायद इज नॉट गिविंग यू द फ्राइडे वाइब यू वर एक्सपेक्टिंग. हैवी ट्रैफिक ने मानकूल बर्दबाय उदमेता साइड ऑल्सो आपको ट्रैफिक मिलने वाला है अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं. मोरिफ टू मोहसना 40 मिनट डिले एट द मोमेंट एंड हैवी ट्रैफिक ने खावा नीच दो. इसके अलावा कहीं अटके हो मुझे बताओ 800-1062 पर.
3: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: दिस सॉन्ग आपकी ब्रांड न्यू SUV में.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ऑनेस्टली इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट इन टच विद selfdrive.ae. Now you can lease a brand new SUV from Jator and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month. This is for a 12-month plan. They've got some fantastic deals. Do visit selfdrive.ae for more details. Terms and conditions apply.
1: Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: सबसे ज्यादा एंग्जाइटी कब होती है? जब पानी नहीं आ रहा होता है, या लाइट नहीं होती है, या फिर प्रॉब्ली यू नॉट फाइंड समथिंग यू लुकिंग फॉर. मुझे सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है जब इंटरनेट नहीं होता, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं. तभी ये चाय वाले भैया वायरल हो रहे हैं. अ क्रिएटिव टी सेलर इन कर्नाटका इज गोइंग वायरल. ही फाउंड अ जीनियस वे टू बीट द लोकल कॉम्पिटिशन, क्योंकि आसपास बहुत सारी चाय की दुकानें थी. तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट अपनी चाय पर, इन्होंने एक बैनर लगाया कि 30 मिनट्स ऑफ फ्री हाई स्पीड वाईफाई मिलेगा विद एवरी ₹5 का चाय का cup that you get from his dukaan. Created absolute stampede. Mere jaise log jo internet ke bina jee nahi sakte, unke liye ye brilliant marketing idea hai.
2: E munde pagal ne sare galan vaddiyan vadde dar umar di hauli hadiye tu ni bach.
1: Filhal bringing in the weekend, we've got AP Dillon. Also aaj release hui hai Drishyam 3, and that's my plan ki main dekhungi, kyunki yaar 2nd October pav bhaji dekhna banta hai.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: All right, I'm going to take you back to aaj hi ka din, 2nd October 2009. And when I read it's been 17 years to this movie. Oh my God, I still couldn't believe it. Ayan Mukherjee ka debut hua tha as a director is movie ke saath. 2nd October 2009 mein hame ek aisi movie mili thi that us millennials can rewatch anytime. And I'm talking to the women. इस मूवी में आयशा को देखने के बाद कहीं ना कहीं हम सब ने एक सपना देखा था कि अपने छोटे शहरों से किसी बड़े शहर में किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे और एक अपना घर बनाएंगे।
2: आयशा, पौने 12 बजे बीच रात के तुम मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में अकेले, चक्कर क्या है?
3: You know, Sid, अजीब लगेगा तुम्हें लेकिन आज रात मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी। You see, कल 10 मिनट में मेरा बर्थडे है और अपनी बर्थडे पे कभी अकेली नहीं रही हूँ।
2: अरे पहले क्यों नहीं बताया? हम बाहर जाते पार्टी शार्टी करते।
3: क्यों, ये भी तो पार्टी है। तुम मैं और
1: दो कप चाय। The movie is still so fresh in my mind and I'm sure you remember the movie. If you do, give me a call. 800-1062 per celebrating 17 years of this cult.
0: Big 106.2.

0: गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 31, फिलहाल ह्यूमिडिटी 57% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Europe? Asia? Somewhere exotic? I've found unbeatable deals around the world. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: I still cannot believe इस मूवी को 17 साल हो गए हैं, 2009 को 17 साल हो गए हैं. It is such a cult and still so fresh. ऐसा लगता है कल ही तो ये मूवी देखी थी. Time is literally flying. When I talk about these movies, मुझे लगता है वक्त जो है वो भाग रहा है बहुत तेजी से. फिलहाल bringing in the weekend, मैं हूँ Mansi and we're celebrating this cult. Surbhi, hi.
3: Hi.
2: सही कहा ना मैंने, ऐसा लग रहा था 2009 अभी तो था, 17 साल हो गए.
3: Yes, yeah, and it's been 18 years since we are in GCC, so it's like a nostalgic feeling for us.
2: I know, right? I know. What a brilliant movie.
3: Yes.
2: सबको बता दें हम किस मूवी की बात कर रहे हैं.
3: Name of the movie is Wake Up Sid.
2: Wake Up Sid, indeed. इतनी कमाल मूवी थी ना, मतलब the relationship that he shares with his parents, the love story between the two of them, and अयान मुखर्जी का डेब्यू था. कमर्शियल मूवी में पहली बार दिखाया गया था कि लड़की जो है वो बड़ी है, लड़का छोटा है.
3: And the acting.
2: I know. I wanted to see them more. I wish somebody makes a part 2 of Wake Up Sid.
3: Yes.
2: अभी तक तो अलग हो गए होते आयुष और सिड, मुझे ऐसा लगता है.
3: Yes, I'm sure.
2: क्योंकि वो नया नया प्यार दिखाया गया है, जिस हिसाब से वो सिड था आयशा नहीं रह पाती उसके साथ.
3: True that.
2: ये कौन है साइड में जो आपको सारे आंसर्स बता रहे?
4: मायापुरी.
2: So what do you think, Mr. मायापुरी, अगर आयशा और सिड जो है इनकी शादी वादी हो गई है, अगर एक पार्ट टू आएगा तो क्या ये साथ होंगे? Now if I see, Sid was not, he was very entitled, he was very spoiled.
3: They were very different personality, I think.
2: हाँ, नहीं different चलो, opposites attract, but Sid ने इतना struggle देखा नहीं. आयशा मिल गई थी उसको खाना खिलाने वाली, घर पर रखने वाली, तो उसने reality नहीं देखी है जिंदगी की.
4: Young age में वो है बिल्कुल 25 years था, I think उसकी में था.
2: मैंने सुना भी है कि 25 साल की उम्र में लड़कों को अपनी उम्र से बड़ी लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं. ये मिस्टर मायापुरी बताएंगे. सच है कि नहीं है?
4: या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
2: अभी पूछना है सिर्फ भी.
4: आफ्टर 20 इयर्स ऑफ कोर्स दे वुड हैव सेपरेटेड बिकॉज़ ऑफ दिस.
2: 100% ऑल ऑफ दीस क्लासिक लव स्टोरीज दैट यू एंड आई ग्रू अप वाचिंग, इन सबका ही सेपरेशन हो गया होता, चाहे वो गीत और आदित्य हो, चाहे वो सिड और आयशा हो. फिलहाल वी आर सेलिब्रेटिंग 17 इयर्स ऑफ दिस कल्ट. कौन सा गाना सुनेंगे?
4: एक बारिश का सॉन्ग था, वो बहुत अच्छा था.
3: आई नो, मरीना के ऊपर
2: गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा. चलो जी, लेट्स रीलिव 2009 शाम. थैंक यू सो मच सुरभि एंड मायापुरी जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय.
4: Bye
2: bye.
3: His name is Ujwal.
2: Ujwal and Sirbi, have a great weekend.
3: Thank you so much.
4: Thank you.

0: with Nancy on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: 8:31 वीकेंड की प्लानिंग हो रही है. वैसे अगर प्लानिंग हो रही है एक ब्रांड न्यू एसयूवी की, देन दिस इज इट. अ न्यू टर्म कॉल्स फॉर न्यू जेटोर. ड्राइव होम योर ड्रीम एसयूवी विद जेटोर्स लेटेस्ट अनबीटेबल ऑफर्स. वाट ऑन देम और 0% इंटरेस्ट. प्लस गेट अ फ्री सर्विस पैकेज एंड एंजॉय अप टू अ मिलियन किलोमीटर वारंटी. EMI starting from just 966 dirhams per month. So, aaj hi aap visit kijiye Jator showrooms. They are in Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain and Fujairah. Your dream SUV could be closer than you think. Jator UAE, part of the Elite Group Holding. Terms and conditions apply.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अब फैंस को चाहिए कॉफी विद करण के लास्ट सीजन में अपने फेवरेट गेस्ट. लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया आर सेइंग दे'ड लाइक टू से सी विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ ऑन कॉफी विद करण काउच टुगेदर, बिकॉज वहीं पे ये लव स्टोरी मैनिफेस्ट हुई थी, शुरुआत हुई थी. बट आई लोकी वांट टू सी विकी कौशल एंड दिलजीत इन वन एपिसोड टुगेदर. इट हैज टू बी द टू ऑफ देम बिकॉज आई थिंक इट्स गोना बी अ वाइब.
1: उड़ती अखियों के लड़ गए पैंचे लड़.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल टाइम फॉर मी नाउ टू से गुड बाय गुड नाइट. वैसे वीकेंड पे भी आपकी बंधु आपकी सखा आई एम गोना बी हियर. आई कीप यू कंपनी ओवर द वीकेंड विद द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. आल्सो ओवर द वीकेंड इट इज हैशटैग नॉस्टैल्जिया. वी हैव गॉट द बिग मिलेनियल वीकेंडर्स एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट for the fellow millennials. Until then, do not forget to follow us on socials. 106.2 Big FM it is. You can say hi to me, I'm Mansi talking. Have a brilliant weekend. Jaisa main hamesha kehti hoon ke weekend pe kuch na karna is the best plan ever.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सम नाइट्स नीड नो वर्ड्स, जस्ट द राइट वाइब. सिंक इनटू द बिग चिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहिए यार मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the big chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.